हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीमती देचे नांगमो से कार्यक्रम रोशनी।

0: जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो मन में एक ऐसा वातावरण चित्रित करते हैं जहां हत्या नहीं, मार काट नहीं, और ऐसा हम प्रायः कहते भी हैं कि हमें तो हिंसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम तो शांति प्रिय हैं, अहिंसा को मानने वाले हैं। ऐसा शायद हम सभी सोचते भी हैं, परंतु क्या हमने कभी खुद को जांचा कि वास्तव में हम करते क्या हैं? चलिए बीते हफ्ते की बात करते हैं। तो इन 7 दिनों में हमने किसी प्राणी की हत्या नहीं की, कोई हाथापाई, लूट मार कुछ भी तो नहीं किया, तो क्या ये मान लें कि पूरा हफ्ता हमने अहिंसा के साथ बिताया? पर फिर एक बार याद कीजिए कि कहीं बातों ही बातों में आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आपके मुंह से जाने अनजाने ऐसे शब्द निकले हों जिससे कि किसी की सुख शांति आहत हुई हो, जिससे उसके सुख शांति की हत्या हुई हो, तो क्या ये हिंसा नहीं? हम जितने भी सुख चाहने वाले हों, शांति प्रिय हों, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे इस क्रिया से, इस काम से, इन शब्दों से कभी अनजाने और कभी जानबूझकर दूसरों की क्षति होती है, दुख पहुंचता है, उनके सुख की हत्या करते हैं, क्या ये हिंसा नहीं? तो देखिए हम कितना अहिंसा प्रिय हैं। और यही नहीं, कभी तो ऐसे शब्द ऐसे विषैले बाण की तरह काम करता है, किसी को ऐसे चोट पहुंचा सकता है कि परिणाम स्वरूप वह बेचारा ऐसे तिलमिला उठता है कि इस चोट से कभी कभी तो कई दिनों तक या कहिए कहीं महीनों तक तिलमिलाहट रहती है, ये दर्द रहता है। तो फिर इससे बढ़कर और हिंसा हम क्या कर सकते हैं? आजकल बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो एकदम हैरान और परेशान कर देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अहिंसा के मामले में पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हैं? कोई बिल्ली दूसरे बिल्ली के बच्चे को प्रेम से संभालती है या फिर शेरनी किसी और शेरनी के बच्चों को पाल रही है, तो ये बात तो फिर भी हजम होती है। पर देखने को ये भी मिलता है कि एक कुत्ता मुर्गी के चूजों को पाल रहा है, एक पानी में रहने वाला डॉल्फिन एक मनुष्य को बचा रहा है, और यही नहीं, एक बंदर पानी में से एक छोटे कीड़े को पत्ते के सहारे बाहर निकालता है। तो मन में लगता है ये पशु भी कितने संवेदनशील हैं, कितना अहिंसा है इन पशुओं में। हम मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और सद्भावना आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। इसके विपरीत एक दूसरे को दबाने की, नीचा दिखाने की भावना अधिक देखने को मिलती है। तो इसका अर्थ है हम में कितनी हिंसा की भावना है। और कहने को तो हम कहते हैं कि ये पृथ्वी हमारी माँ है और इस पर रहने वाले सभी जीव जंतु एक परिवार के सदस्य समान हैं, वह हमारे भाई बहन समान हैं। पर व्यवहार में ये बात कहीं सजती नहीं है। यदि हम सचमुच अहिंसा प्रिय होते तो शायद हम सब मिलकर सुख शांति से रह पाते। यदि हम में से हर व्यक्ति इस बात को समझे और थोड़ा सा भी प्रयास करे तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो चलिए अगली बार किसी को यदि हम बहुत दुखी और हताश देखें तो कुछ ऐसा प्रयास करें, शब्दों से ही सही, जिससे उसके मन को बहुत राहत पहुंचे, शांति मिले, सुख की अनुभूति हो, तो फिर हमने अहिंसा का काम किया। तो समझना ये है कि अहिंसा का अर्थ केवल हत्या मारकाट से बचे रहना, लूट मार झगड़े फसाद से बचे रहना इतना ही नहीं है, अपितु जितना हो सके अपने वाणी को, शब्दों को अपने नियंत्रण में रखकर इनका सही समय पर सही उपयोग करना है, जिससे हम स्वयं ही नहीं अपने वातावरण को सुख शांति से तरंगित कर सकें और इस तरह वास्तव में अहिंसा प्रिय और अहिंसावादी बन सकें।
1: अभी आप सुन

0: बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।

0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेत्रित्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया

0: 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 225,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Center unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: ngaji Akashwani leni shunjiktan kasata tusu chabi kistingni Ladakh sanaga nasul sanazat.
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

0: बंधू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: नक्सङ्गेसरङ्गे कालापानी फिल्मेलो आशा भोसले तङ मोहम्मद रफी ने सानाजा लुट सोमखा निनपेन मजरू सुल्तानपुरी याङलु याङस्टेक का निनपेन एस डी बर्मन
1: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिन बन गया
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ये फिल्म लोगन संकलन से आकाशवाणी लेने सनेन चिकतान कसता हमराज फिल्म लो महेंद्र कपूर ने सनाजात।

नागसंगे शरंगे जब प्यार किसी से होता है फिल्म मिलो लता मंगेशकर तंग मोहम्मद रफी ने सना जाच हजरत जय पुरुष तुम्स खने लुआ यंगस्टिक कनिन पिन शंकर जय किशन का सता फिल्म मिलु डिक्री में स्तिंग जुप्पे का मेरे जीवन साथी फिल्म मिलु सना जात किशोर कुमार ने लुरसोम खन मजरू सुल्तानपुरी लुयांगस्टिक खन राहुल देव परमन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. United States Ambassador to India Sergio Goh today congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming the country's longest serving elected Prime Minister. In a social media post, Mr. Goh said that this achievement is a powerful testament to Prime Minister Modi's decades of dedicated public service and leadership. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. Our correspondent has more details on the meeting.
3: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: The centre has unveiled 1.25 lakh crore rupees push for rural development in the country. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan said that the central government has already allocated 30,000 crore rupees under MG Narega. He said, in addition to this, an interim allocation of 95,692 crore rupees has been released to states and union territories. With this, the total allocation will exceed 1.25 lakh crore rupees. Mr. Chauhan said this after chairing a virtual meeting of state rural development ministers regarding the implementation of Viksit Bharat Jiramji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. The government has refuted several social media posts falsely claiming that the Reserve Bank of India, RBI, will withdraw paper currency notes and replace them with plastic currency notes from 30th of this month. Fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has termed the claim as fake. PIB clarified that according to the RBI, there are no plans to withdraw paper currency notes or replace them with plastic currency notes by the end of this month. The U.S. military has launched strikes against Iran in response to the downing of a U.S. Army Apache helicopter off Oman coast. U.S. officials said the helicopter was brought down by an Iranian drone and two pilots were rescued. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned that Tehran would leave no attack or threat unanswered, saying the United States has tested Iran's resolve. Meanwhile, on the Lebanese front, Israel carried out strikes on the southern Lebanese port city of Tyre on Tuesday, after issuing an evacuation order covering the entire city for the first time. The India Meteorological Department has forecast heatwave conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and West Rajasthan. Hot and humid weather conditions are expected during the day at places over Konkan, Goa and Odisha. Meanwhile, heavy rainfall conditions are expected over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka and sub-Himalayan West Bengal, Sikkim. Parts of Bihar, interior Karnataka, Kerala, Mahi, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana and Northeast India are also likely to witness rainfall during the next 2 to 3 days. Fast bowler Mohammad Siraj has been withdrawn from India's squads for the upcoming T20 international series against Ireland and England. The men's selection committee has named Prasidh Krishna as Siraj's replacement for both T20I series. In a statement, the BCCI said that its medical team and the team management advised Siraj a period of rest as part of his workload management program. And that is the end of this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बुल्गारिया और फिनलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वाराणसी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन और आवर्जन प्रक्रिया शुरू हुई। ओमान तट पर सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और

0: वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों की समर्पित जनसेवा और उनके नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पुर्तगाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुर्तगाल के लोगों और पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानगेल को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत पुर्तगाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने के लिए तत्पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने यह घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आवर्जन और सामान संबंधी औपचारिकताओं को पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। उन्होंने बताया कि वाराणसी आसानी से कनेक्ट उड़ानों के मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर है। उन्होंने इसे भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय हवाई संपर्क को महानगरों से आगे ले जाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा और कहा कि अमरीका ने ईरान के संकल्प की परीक्षा ली है। इस बीच लेबनान में कुछ ही दिन पहले हुआ युद्ध विराम टूटने की कागार पर है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान बंदरगाह शहर टायर पर हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए। नवीनतम संघर्ष ने इसराइल और ईरान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: दक्षिणी फिलीपींस में कल बचाव दल ने क्षतिग्रस्त इमारतों की तलाशी ली ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा न रह गया हो।

कभी तुमको भी एहसासे मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की जरूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जगता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। जमाना प्यार का दुश्मन है, तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कभी कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, न जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना। और आप आ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज करती हूं आपका वेलकम, स्वागत और खैर मकदम भी। और आपको क्या करना है, जल्दी से खोलना है अपना फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब, जो भी आपके पास मौजूद है, fmgoldair@gmail.com पर भेजना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ शेरो शायरी या कोई ऐसी बात जो दिल छू जाए तो बस बात बन जाए, है ना। और व्हाट्सएप मैसेज भी अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए जनाब, 9868 68753। जी हाँ, और इस सब के साथ टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी। जी हाँ, क्योंकि

आज मैं पूछने वाली हूँ दिल का मेल बॉक्स में आपसे एक सवाल, जिसका सही जवाब भी आप लिखकर भेजेंगे अपने मैसेज में। तो गौर से सुनिए, आपको आज बताने हैं उस गीत के बोल जिसमें हमारे प्यारे किशोरदा, मतलब बहुत ही प्यारे किशोरदा ने मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस में गाया है। साथ ही ये गीत किस फिल्म से है ये भी आप लिखकर भेज दीजिए। फिलहाल रुक कर लेते हैं आपके मैसेजेस का, जो आप बड़ी ही प्यार से भेज रहे हैं। तो जनाब, पहला मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आया है सीधा कहां से, जगह, हाँ, शिवाजी चौक कटनी से आया है ये मैसेज। लिखते हैं कि जिसकी निगाहों में किसी का प्यार जब रच बस जाता है, तो प्यार की खूबसूरती, प्यार की समीपता जिंदगी में अपना बनाने के लिए आतुर हो जाती है। लेकिन किसी के प्यार को पाने के लिए, किसी के प्यार को जीतने के लिए, प्यार करने वाले को डर रहता है कि किसी राह में किसी का प्यार दुख ना पहुंचा जाए, प्यार के सपने बिखर ना जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही, और इसी बात को साबित करती एक शायरी मुझे याद आ रही है। बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरों से मिलती हैं अक्सर नजरें, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता, है ना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और एक और मैसेज जल्दी से शामिल कर लेते हैं, फिर सुनेंगे एक खूबसूरत सा गाना। अनु बरजात्या जी का मैसेज खोल लिया है मैंने और लिखती हैं, डियर नाज, ये आपके लिए। थैंक यू। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं, आंखों में एक सुकून जैसे चांदनी रात की शांत झील, हंसती है तो माहौल हल्का हो जाता है जैसे बगीचे में बहार आ गई हो, बातों में मिठास, लहजे में नरमी और हरकत में एक अलग सी शालीनता। न जेवरों की चमक चाहिए न मेकअप की सजावट, उसकी सादगी ही सबसे बड़ी रौनक, लगता जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से उसे तराशा हो, और हर अदा फूलों जैसी नजाकत भरी। खूबसूरती तो बहुतों में होती है, पर उसके चेहरे पर जो नूर और आंखों में जो सच्चाई है, वही उसे सबसे अलग बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ अब बातों को देते हैं थोड़ा सा ब्रेक और सुनते हैं खूबसूरत गाना, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है होली चौक उत्तम नगर से। जी हाँ, जयराम खोरवाल साहब, सचिन, अमन, दीपांशु, इन्होंने भेजी है ये फरमाइश रफी साहब की आवाज में, ये खूबसूरत गीत। चलिए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

90 साल का सफर, 90 साल की शान, आकाशवाणी रहा सदा भारत की पहचान। जी हाँ, हर कोने तक पहुंचाया जिसने ज्ञान और प्यार, उस अमर आवाज को हमारा शत शत नमस्कार। ये मैसेज भेजा है राजेंद्र जटोलिया जी ने उषा चारू के साथ दिल्ली नागलोई से, लिख रहे हैं ये मैसेज और बहुत बहुत शुक्रिया मैं कह रही हूँ इन्हें इस मैसेज के लिए। और इसी के साथ अब दूसरे मैसेजेस का भी हम रुख कर लेते हैं जो लगातार आप भेज रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे अपनी तारीफ सुनने का और उसे पढ़ने का शौक है, लेकिन आप इतने प्यार से लिखकर भेजते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता, और इतनी मेहनत आप करते हैं लिखने पर तो उसे पढ़ना तो बनता ही है ना। तो लिखते हैं कि नाज वो नाज है, हमें भी नाज है उसकी आवाज पर, जैसे कोई मीठा सनगमा बजता हो साज पर। जब वो बोलते हैं तो थम जाती हैं धड़कनें, पल भर को खुदा की रहमत बरसती है उनकी इस आवाज पर। उनकी बातों में घुली है मिश्री और वफा का नूर, उदासी के बादलों को चुकर देती है पल में दूर। वो लफ्ज नहीं दिल को छूने वाला एक एहसास है, उनकी सादगी पर जमाने का हर दिल है मजबूर। सलामत रहे उनकी ये महफिल और ये हसीन अंदाज, जिस पर झुकता है अदब से आज सारा श्रोता समाज। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैसेज आया है बबलेश पवार जी की ओर से, डैनी पवार और मनीष पवार इनके साथ शामिल है, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आया है ये मैसेज। इनके साथ ही रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श खलीफा साहब भी इनके साथ जुड़े हैं खलीफों की बावड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं, इसमें भी लिखी है बड़ी अच्छी बात कि शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो जमीर को जिंदा रखना। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स जानते हैं, दो शख्स को पता है। पहला

ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल सही बात है जी। सतीश अनेजा बिमला अनेजा के साथ लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से, और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश भी, जिसे हम पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, आशा जी की आवाज में है। तो चलिए सुनते हैं और फिर जल्दी से वापस लौट कर भी आ जाते हैं।

0: देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वेलकम टू द शो वंस अगेन। दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ और पढ़ रही हूं आपके प्यार भरे मैसेजेस। जी हां, तो मेरे सामने खुला हुआ है इस वक्त राधा नामदेव, अमन आफरीदी, दानिश शेख, नवाज शेख, बेगम इमराना नाज जी का मैसेज, और इनके साथ शामिल हैं मास्टर खिल्लू परवेज जी भी। लिखते हैं कि खूबसूरत नजारा, खूबसूरत चेहरा हमेशा दिल को भाता है, लेकिन सच्चाई बयान तब हो जाती है जब खूबसूरत वादियां भी उन नजरों का बखान करने लगती हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि माहौल भी जब आपका साथ देने लगे तब समझ जाइए कि कुछ अच्छा होने वाला है ना। और चलिए इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं और मैसेजेस का भी, और एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि एक सवाल भी पूछा है मैंने आज आपसे। आपको बताना है कि वो कौन सा गाना है, किस फिल्म से जुड़ा है वो गाना, ये भी आप बताएंगे, जिसमें किशोर दा ने मेल और फीमेल दोनों ही वॉइसेस में गाया है। बहुत ही मशहूर गाना है और बहुत ही चुलबुला गाना है। गीत के बोल आप लगातार लिखकर भेज रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूं कि वो सभी नाम मैं अंत में शामिल कर पाऊं जिन्होंने भेजा है आज के सवाल का सही जवाब। चलिए अगला मैसेज पढ़ लेते हैं इसी बात पर। हरजिंदर छींदा जी ने लिखा है, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता इनके साथ शामिल हैं और ये इनकी पोतियां हैं। गांव नथाना पंजाब से है ये मैसेज। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि सब मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। बहुत ही अच्छी बात और बहुत जरूरी बात लिखकर भेजी है सर आपने। बहुत जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें और अपने एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में सोचें, क्योंकि यही है जिससे हमारा जीवन है। चलिए और मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र कुमार राय जी ने मैसेज भेजा है फरीदाबाद से और अपनी फरमाइश भी लिखकर भेज दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है, ये गलत बात है। और चलिए एक और मैसेज शामिल करें। कार्यक्रम आपकी पसंद, जी हाँ, दिल का मेलबॉक्स है कार्यक्रम, और लिखते हैं कि आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दिल के करीब होते हैं वो अक्सर समझ नहीं पाते कि वो कितने खास हैं, ये मेन बात लिखी है। वक्त कहता है कि ठहर जा, दिल कहता है कि चल पड़, और जिंदगी बस इसी खींचतान में बीत जाती है। जी जनाब, यही तो है जिंदगी, जिसे हमें काटना नहीं जीना है। ये मैसेज आया है हमारे पास लालगिरी गोस्वामी जी की ओर से, हेमलता, हिना और हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आया है ये मैसेज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज अब हम शामिल कर रहे हैं राजेंद्र नारंग जी का, और अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग के साथ इन्होंने लिखा है ये मैसेज, अपना फरमाइशी गीत लिखा है और मंडी डबवाली से लिखा है। आपका भी शुक्रिया। और बागपत यूपी से भी एक मैसेज आया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी की ओर से, इन्होंने भी अपनी फरमाइशी लिखकर भेजी है। देखिए मेरी नजरें जो ढूंढती है ना मैसेजेस, वो ढूंढती हैं कुछ शेरो शायरी, क्योंकि मैं तो देखिए मुरीद हूं, कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए, बोलने को मिल जाए तो बस और क्या चाहिए, है ना। तो एक और मैसेज मुझे मिल गया है। लिखते हैं कि चाह कर भी अपने आप को मेल करने से हम रोक नहीं पाते, हमारे कानों में नाज की मीठी आवाज जो पड़ जाती है। खुदा जाने ये कयामत कहां से आई है, इतनी खूबसूरत आवाज खुदा ने बनाई है, माशाल्लाह, क्या बात है सर।
चौखुंटी बुलंदशहर से ये मैसेज आया है। सईद अब्बासी साहब ने लिखा है, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा परिवार इस मैसेज में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज को लिखने के लिए। और देखिए एक और मैसेज आ चुका है, सत प्रकाश सनोठिया साहब ने लिखा है रोहिणी से, लिखते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा सौ बरस के पल की खबर नहीं। बहुत ही गहरी बात छुपी है इस शेर में। और अगला मैसेज भवरपुर बसना से है, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन के साथ ये मैसेज आया है भवरपुर बसना से, और लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस गीत की जिसके बोल आप लगातार मुझे लिखकर भेज रहे हैं, और बिल्कुल सही लिखकर भेज रहे हैं जनाब। जी हाँ, फिल्म है हाफ टिकट, और इसी मूवी में जो कि आई थी साल 1962 में, किशोर दा ने एक अलग ही कमाल कर दिखाया था। एक गीत के लिए उन्होंने मेल और फीमेल दोनों ही वॉइसेस में गाया, और क्या गाया था। सलिल चौधरी का संगीत, किशोर दा और प्राण साहब की जबरदस्त परफॉर्मेंस यानी अदाकारी, वाकई कमाल ही कर गई। और गीत के बोल जो आप लिखकर भेज रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया तेरी तिरछी नजरिया, ओ गॉड आई एम सो एक्साइटेड टू हियर दिस मस्ती भरा सॉन्ग। बट उससे पहले वो सभी नाम भी तो ले लूं जिन्होंने भेजा आज के सवाल का सही जवाब। तो भाई आफताब अंसारी साहब गंज डुंडवारा से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले आपने सही जवाब भेजा। उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, अनुबर जातिया मुंबई से, प्रकाश चंद्र जोगिया दिल्ली से, जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से आया बिल्कुल सही जवाब। नवाब अहमद भारती बल्ली मारान से, बोधराज खुरवाल उत्तम नगर दिल्ली से, धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, सत प्रकाश सनोठिया रोहिणी, लखमीर सिंह महलखेड़ी कैथल हरियाणा से, गौरी शंकर वर्मा नागलोई से। और दोस्तों जैसा कि मैं देख रही हूं लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, और वक्त की कमी के चलते मैं सभी नाम तो शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक मैसेज जो अभी अभी आया है उसे जरूर शामिल करूंगी। नजर को नजर की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुम्हें देखना है इस नजर से जिस नजर से तुम्हें नजर ना लगे। उग्रसेन यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। और एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं, उससे पहले उसके बाद हम सुनेंगे वो गीत जिसका जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो यही साथी यही मीत, दर्द काटे गीत संगीत, कभी तो हमारी भी फरमाइश का गीत सुना दिया करें, मेहरबानी होगी। और दुआओं में याद रखना हर पल, माफ कीजिए आज आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आगे जरूर कोशिश करेंगे। मैसेज आपने बहुत अच्छा लिखा है, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, राहुल खुराना, रचिता और केशु और रिधान भी इस मैसेज में शामिल हैं। तो चलिए जनाब वक्त बहुत कम है, किशोर दा को भी सुनना है और वो गाना भी इंजॉय करना है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। गाना सुनेंगे, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, मतलब जाना तो कहीं नहीं है, वहीं टिक कर रहना है कुर्सी पर, और फिर सुनेंगे तस्वीर, और मैं लेकर चलूंगी आपको एक खूबसूरत जगह, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे

0: लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest continuous serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period, the NDA government under Prime Minister Modi has delivered bold reforms and has implemented several initiatives with unprecedented pace and scale. She emphasized that Prime Minister Modi provided decisive and strong leadership through a series of challenging times that the nation has faced. A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Our correspondent has more details.
2: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.

Namaskar, suswagatam, assalamu alaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11:24 एज यू नो ऑलरेडी कि ये समय है सैर सपाटे का क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूं पूरी तरह से तैयार लेकिन क्या आप तैयार हैं अगर हां तो ध्यान से सुनिए आज मैं करवाने वाली हूं आपको राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में मौजूद एकमात्र हिल स्टेशन की सैर अरावली रेंज में मौजूद रेगिस्तान की गर्मी में सर्दी का एहसास कराने वाली ये जगह जो कि बेहद खूबसूरत है और करने के लिए जहां बहुत कुछ है बस वहीं की सैर करेंगे आज आप मेरे यानी नाज के साथ जगह का नाम क्या है वो मैं नहीं बल्कि आप ही मुझे बताएंगे कहां और कैसे ये भी आप जानते हैं एफएम गोल्ड AIR दिल्ली एट द रेट

जी हाँ बिल्कुल, केसरिया बालम, जहाँ की है शान ये गाना, वहीं पहुंच चुके हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, राजस्थान। और जगह का नाम क्या है? ये बिल्कुल सही सही लिखकर भेज दिया है विजय नारंग साहब ने दिल्ली से, सपना बोकोलिया जी ने नागलोई दिल्ली से ही, अनु परजातिया जी ने मुंबई से, उग्रसेन यादव जी ने भी दिल्ली से, एस के खन्ना साहब ने विकासपुरी से और सुदर्शन मुखी जी ने शांति नगर सोनीपत से। जी हाँ बिल्कुल सही हैं आप। माउंट आबू जा रहे हैं आज आप मेरे साथ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कैसे पहुंचना है माउंट आबू तक, चलिए अब ये बता देती हूँ। तो भाई नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ने वाला है आबू रोड, ठीक है, यहाँ की निचली पहाड़ियों पर ही मौजूद है। कनेक्टिविटी जिसकी दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर अहमदाबाद, हर जगह से बहुत ही बढ़िया है। और रेलवे स्टेशन से मेन हिल स्टेशन तक के लिए आपको यहाँ आराम से बसें या फिर टैक्सीज आराम से मिल जाती हैं। बाय रोड अगर आपको सफर करना पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अहमदाबाद से रेगुलर बसेस आपको मिल जाएंगी माउंट आबू तक के लिए। अपनी गाड़ी से अगर जाने का विचार बने तो पकड़ लीजिए नेशनल हाईवे 14 का साथ और पहुंच जाइए खूबसूरत नजारों का लुत्फ लेते हुए सीधा, एकदम सीधा माउंट आबू। बाय एयर लैंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है उदयपुर एयरपोर्ट जो माउंट आबू से लगभग 185 किलोमीटर दूर है, और दूसरा ऑप्शन आप अहमदाबाद भी चुन सकते हैं, जहां के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आपको करीब 221 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, फिर जब वापस आएंगे तो मुझे आपको है बताना कि किस मौसम में आपको चाहिए

राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में माउंट आबू एक ताजी हवा की तरह है। अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंची जगह, लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा माउंट आबू कई वजहों से आपको अपनी ओर खींचता है। खूबसूरत नदियों, झीलों, झरनों, सदाबहार वनों से लबरेज माउंट आबू ओएसिस इन द डेजर्ट यानी मरुस्थल का नखलिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा, नखलिस्तान इस शब्द के मायने क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। नखल यानी खजूर का पेड़ और स्थान माने जगह, यानी एक ऐसी जगह जो भले ही रेगिस्तान में हो लेकिन वहां खजूर के पेड़ और हरियाली भरपूर है। तो ऐसी ही करिश्माई और खूबसूरत जगह लेकर आ गई हूं मैं आपको, जिसका नाम है माउंट आबू। बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा यहां आने के लिए? तो जनाब, इसका जवाब है सर्दियां, यानी नवंबर से फरवरी के बीच, जब मौसम होता है यहां सुहाना और टेम्परेचर रहता है 15 से 25 डिग्री के बीच। रातें हालांकि काफी ठंडी होती हैं यहां, जब टेम्परेचर कई बार 0 डिग्री तक भी गिर जाता है। दिसंबर के एंड में यहां का विंटर फेस्टिवल आप एंजॉय कर सकते हैं और

अगर आप आते हैं मार्च से जून के बीच, तब बाकी राजस्थान के मुकाबले तो आपको यहाँ कुछ राहत जरूर महसूस होगी, क्योंकि इस दौरान यहाँ का तापमान आप महसूस करेंगे 25 से 34 डिग्री के बीच, और साथ ही आप हिस्सा बन सकते हैं समर फेस्टिवल का भी। मॉनसून यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच अगर आप माउंट आबू आते हैं तो आपको मिलेगी रुक रुक कर बारिश। और हो सकता है कि आप बोटिंग और ट्रैकिंग मिस कर जाएं, क्योंकि बारिश के दिनों में अमूमन ये दोनों एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं। हालांकि अरावली की पहाड़ियों पर हरियाली और धुंध आपको जरूर मिलेगी, जो कि राजस्थान की रेतीली जमीन पर किसी जादू से कम नहीं।

0: पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां मैं यानी नाज आपको लेकर आ गई हूं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की सैर पर। राजस्थान के सिरोही जिले का हिस्सा है माउंट आबू, जो अतीत में माउंट अबू यानी अरबुदांचल का हिस्सा हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्वत हमेशा से घने जंगलों से घिरा रहा और यहाँ

ऋषि वशिष्ठ निवास किया करते थे और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यहीं माउंट आबू की चोटी पर यज्ञ किया था। एक कथा ये भी कहती है कि अर्बुदा नाम के एक सर्प ने भगवान नंदी का जीवन यहां पर बचाया था और इसीलिए इस पर्वत का नाम अर्बुदारण्य पड़ गया, जो बाद में अबू कहा जाने लगा। राजस्थान और गुजरात की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए ये जगह हमेशा से सबकी पसंद रही, फिर चाहे वो महाराजाओं का शासनकाल रहा हो या फिर अभी का समय। छुट्टियां बिताने के लिए माउंट आबू एक परफेक्ट डेस्टिनेशन था, है और हमेशा रहेगा। यहां पर बने बड़े बड़े घर, ब्रिटिश स्टाइल में बने बंगले, हॉलिडे लॉज आपको एक अलग ही रॉयल एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही जंगलों की तरफ आप जब जाते हैं तो आदिवासी जातियों के डेरे भी आप देख पाएंगे माउंट आबू में। और क्या कुछ है यहाँ देखने और घूमने लायक जानेंगे इस अगले ट्रैक को सुनने और एंजॉय करने के बाद।

और देखिए मेघा तो सुबह से ही आज छाए हुए हैं यहाँ दिल्ली में। आपके यहाँ क्या हाल है जरा बताइए लिखकर। लेकिन बरस नहीं रहे हैं ये मेघा। कोई बात नहीं, बरस ही जाएंगे। मॉनसून अब बहुत ज्यादा दूर तो नहीं, गर्मी से राहत भी मिल ही जाएगी। और फिलहाल लौटते हैं माउंट आबू, जहाँ अगर आप पहुंच गए हैं तो यहाँ की नक्की लेक तो घूमना बनता ही है। और क्यों आपको यहाँ जरूर आना चाहिए अब ये सुन लीजिए। माउंट आबू के बीचों बीच मौजूद भारत की पहली मानव निर्मित झील है ये, जो लगभग 80 फुट गहरी है और माउंट आबू का दिल इसे कहा जाता है। नक्की, ये शब्द जो है वो हिंदी के नख यानी नाखून से निकला है। दरअसल मान्यता इस झील को लेकर ये है कि प्राचीन काल में देवताओं ने राक्षस बशकली से अपनी रक्षा करने के लिए और प्रवास करने के लिए इस पूरी झील को अपने नाखूनों से खोद कर तैयार किया था। गरासिया जनजाति के लिए ये झील बहुत ही पवित्र है। और जानकारी ये भी मिलती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का एक हिस्सा भी इस झील में विसर्जित किया गया था। उनकी याद में झील के किनारे गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। आप यहां आएंगे तो बोटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। पैडल बोट, रो बोट या फिर कश्मीरी स्टाइल शिकारा बोट, वो भी यहां मिलेगी आपको। इसके अलावा झील के ठीक ऊपर एक बड़ी सी नेचुरल चट्टान है, जिसका आकार हूबहू एक टोड यानी मेंढक के जैसा दिखता है। और इसीलिए तो इसे टोड रॉक कहा जाता है, जहां आप ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। झील के किनारे की तरफ अगर आप जाएंगे तो मॉल रोड आपको मिलेगी, जहां आप जी भर के कर सकते हैं शॉपिंग। राजस्थानी हस्तशिल्प, बांधनी के कपड़े, लेदर आइटम्स और कोटा डोरिया की साड़ियां आप यहां से खरीद सकते हैं और अपने इस सफर को यादगार बना सकते हैं हमेशा के लिए।

देखिए पूरी दुनिया में माउंट आबू अपने दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है और सफेद संगमरमर पर की गई बेजोड़ नक्काशी और यहाँ की वास्तुकला आप देखते ही रह जाएंगे। बाहर से भले ही ये मंदिर आपको साधारण से लगे लेकिन इनके अंदर कदम रखते ही आपकी नजरें यहाँ की छतों, खंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी पर टिक जाएगी। और एक खास बात यह है कि ये कोई एक नहीं बल्कि 5 मंदिरों का समूह है जो जैन धर्म के अलग अलग तीर्थंकरों को समर्पित है। सबसे पुराना मंदिर है विमल वसाही मंदिर जो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। दूसरा मंदिर है लोन वसाही मंदिर जो तीर्थंकर नेमीनाथ जी को समर्पित है। और तीसरा है पितलहर मंदिर जहां भी आपको भगवान आदिनाथ जी की एक विशाल मूर्ति के दर्शन होंगे। इसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर आप पहुंचेंगे जो कि 3 मंजिला सबसे ऊंचा मंदिर है और जिसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। और इसके बाद आखिर में महावीर स्वामी मंदिर में आप पहुंचेंगे और करेंगे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी के दर्शन। और इन्हीं मंदिरों के नजदीक आप पाएंगे एक और छोटा सा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों में सबसे पुराना ये मंदिर माना जाता है जिसकी सभी दीवारें आपको लाल रंग से रंगी नजर आएंगी। और बस इसीलिए तो लाल मंदिर के नाम से आप इस जगह का जिक्र यहां यानी माउंट आबू में हर किसी के मुंह से सुनेंगे। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना और फिर जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और स्पॉट्स की जो माउंट आबू की शान है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agnivir Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: आबू की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां अब बात होगी नेचर के साथ हमारे लव की। चलेंगे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए किसी हेवन माने स्वर्ग से कम नहीं। करीब 288 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य की स्थापना साल 1960 में हुई थी, और इससे पहले ये जगह सिरोही के राजा महाराजाओं की शाही शिकारगाह हुआ करती थी। यहाँ दर्शन होंगे आपको तेंदुए यानी लेपर्ड के, इसके अलावा स्लॉथ बेयर, सांभर हिरण, चिंकारा, लंगूर, नेवले, साही और सियार भी बड़ी तादाद में आपको नजर आ जाएंगे। बाकी बर्ड्स वॉचर हैं आप तो करीब 250 से भी ज्यादा बर्ड्स की प्रजातियां आप यहां देख पाएंगे। राजस्थान के रेगिस्तान में होने के बावजूद आपको यहां मिलेंगी पौधों की 820 से भी ज्यादा प्रजातियां। और एक कमाल इस जगह का ये है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगी अलग अलग तरह के ऑर्किड्स और जंगली गुलाबों की 3 दुर्लभ किस्में भी। अभयारण्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ अगर आप जाएंगे तो पाएंगे बांस के जंगल, और ये सब कुछ आप जीप सफारी के जरिए खूब अच्छे से घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नेचर को और करीब से महसूस करने की अगर है ख्वाहिश तो इसके बाद सीधा चले जाइएगा पीस पार्क, जो कि माउंट आबू का बेहद खूबसूरत और शांत बगीचा है। और अरावली की दो मशहूर चोटियों गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच घाटी में मौजूद है। रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ यहाँ का सिट्रस कॉर्नर भी जरूर आप देखिएगा, जहाँ आपको मिलेंगे नींबू और संतरों के ढेर सारे पेड़। पार्क के एंट्रेंस पर ही आपको मिलेगा रॉक गार्डन, और साथ ही जैसा कि इस जगह का नाम है पीस पार्क यानी शांति का अनुभव आप यहां कर पाएंगे। इसके लिए कई पत्थर की गुफाएं और घास की झोपड़ियां यहां पर बनाई गई हैं, जहां आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी सारी चिंताओं को भूल सकते हैं।

और अब चलते चलते अगर थक गए हैं आप तो लीजिए थोड़ी सांस और लुत्फ उठाइए माउंट आबू में मिलने वाले लजीज पकवानों का। जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन होने के साथ साथ माउंट आबू गुजरात की सीमा के भी बेहद करीब है, इसीलिए राजस्थानी और गुजराती स्वाद का मेल आप यहाँ पर चखेंगे। लगभग हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में आपको सर्व की जाएगी गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा और गुजराती थाली भी। नक्की झील के आसपास जब आप घूम रहे होंगे तब जरूर टेस्ट कीजिएगा यहाँ की फेमस रबड़ी या बासुंदी, जो पूरे राजस्थान में मशहूर है, मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म या फिर ठंडा, जैसी आपकी इच्छा आप इंजॉय कर सकते हैं। दाल कचौरी, मिर्ची वड़ा और साथ में गर्मा गर्म चाय, सुबह की शुरुआत तो भाई इसी नाश्ते के साथ होनी चाहिए और बीच बीच में हल्के फुल्के स्नैक्स के तौर पर जरूर खरीदिएगा चना जोर गरम, जो आपको यहां यानी माउंट आबू में लगभग हर जगह मिलेगा। एंजॉय कीजिए तस्वीर की प्लेलिस्ट से आज का ये लास्ट सॉन्ग। मुझे यानी नाज को दीजिए इजाजत फिलहाल आपसे विदा लेने की, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ जरूर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर और नमस्कार।

कसा था कुमार सानू सलकनी, कभी हाँ कभी ना फिल्मेलो सनाजात, मशरू सुल्तानपुरी सोमसला यांग श्रेकन जतिन ललित।

लु सलकन अलका याग्नितंग हरिहरन लुर सुमखन मशरू सुल्तानपुरी यंग लु यंग श्रीकन जतिन ललित कसता खामोशी फिल्मिलो सनाजात।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: है। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
3: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
3: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या

0: 4045 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
2: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: जी। अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
4: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास इडामलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगलपुझा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्ष्य

0: उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पहरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: Daksangi jirangi NCERT chindak zat kane tigrim umangi khak chik song sumge sumpa sana zats. Ngaji akashwani lene juin jik tangin. Ngime chutsot chik chaduk. Kasata tutsot sabi gistingne akashwani dilene hindi tang angrezina nasul sana zat.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसी तरीके से

0: सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, जिस भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, इस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में दबंग फिल्म से इस गीत को। गीतकार है फैज़ अनवर और संगीतकार है साजिद वाजिद।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत केके की आवाज़ में तुम मिले फिल्म से। इस गीत को लिखा है सैयद कदरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं सोनू निगम को साथिया फिल्म में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

अभी आप सुन रहे थे तारा रामपम फिल्म से गीत शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। अगला गीत लीजिए सुनिए मैं हूं ना फिल्म से।

अभी आपने सुना वेकअप सिद्ध फिल्म से गीत कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाइयों सुनेंगे मोहित चौहान और सुजैन की आवाज़ में रॉकस्टार फिल्म से इस गीत को। ए आर रहमान के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

इस गीत के साथ फौजी भाइयों, वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

हम आकाशवाणी लेह से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हो रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें, मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडीए की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4398 दिन का था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। मरकजी काबिना ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत के तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। आज कौमी राजधानी में मरकजी काबिना की मीटिंग के दौरान काबिना के मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया। इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव मरकजी काबिना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी दे रहे हैं।
1: जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम देने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि ये तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वज़रा अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दिगर वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके आज़ाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वज़ीरों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क्यादत में 25 करोड़ कुंभों को गुर्बत से बाहर लाया गया है। जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए माशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, तो सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने

0: पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए

0: विषय मानव विकास, ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Medium wave kilohertz chikstong apchung aksum, yang na meters ngipe ya chugyab jitang shuzurgu, yang FM megahertz gyanang chiktang shuzur chigeka, ngaji akash pani lene juen jiktangin. Ngime chutsot ngistang pe chaduk, kasata

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ibo akashwani le inka satangeja rangai phunchuk wangmunas na sulsanazat ladas ujungas de chief secretary ashish kundre drasi degree colleges score jate yonta nishuna sika yonta ni lasrim guntang lani zo yarga silaser dulin yotkhan gun score lal ta tok chhar lena jate nok itus khongtang yang por zon spun imtiaz ka chu shtitus abdul samad tang abdul wahid sdm vishal atri the te jungshuli delus pun bogun jukste yote nok izik score jing sla chief secretary high Altitude Biodiversity Conservation and Research Pagika Shkute Ek Ped Ma Ke Naam Charji Naang Loga Shchangma Jiga Tsuga Zate Nok. Cabinet is Amravati Andhra Pradesh Nanga Dani Zo Yargasi Charji Chenmo Ngisla Nangwa Salte Nok Sojungi Railway Lunpo Ashwani Vaishnavis Iskola Shadazaz.
1: ये नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का इस कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा दो प्रोजेक्ट्स हैं एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ऑफिस के बाद में मैं आता हूँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अमरावती का ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज प्रदेश पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं उनको एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनाने के लिए आज ये फैसला किया गया इसके लिए करीब 17 एकर्स की लैंड राज्य सरकार ने दी है और 1500 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इसके लिए बनेंगे आपने देखा होगा अमरावती का लेआउट जितना है स्क्वायर शेप में सारा परपेंडिकुलर रोड्स है एक स्क्वायर ग्रिड की तरह इसका डिजाइन किया गया है
0: Zamling Jide de Punchinpo, Chenor Gonsash Kabgun Tale Lama, Galva Ejin Nurbu Chogis, Talo March Childes Sumchujara, Garat Lochoks Belkop Ejichasne, Jispa Stanzin Lex Munchogash, Kabje Galdan Tito Gian and Nispa, Rizong Shastul Jesun Topstan Nima Lungstok Stanzin Nurbu, Palzampo Chogis, Kuyang Shiditula, Muzin Zatkani Kaik Pepspa Nanjinla, Dering Junil de Ses Chujara, Squee Lakar Gave Ninmur. Serges Ngaris Khansan Yongski Geveshes Ngenchenpo Gyutsmat Khandimbochi Jezun Ngawang Sangyas Palzangpo Chok Ashtos Khansan Irgan Geshes Ngawang Zangpo Tang Khansan Ishchi Irgan Langyases Jalka Juazate Yangshit Chokcholimbochi Choga Mandal Ashtensum Dexbul Juazate Chokcholimbochi Chogi Skui Sangsum La Galkin Chigang Medpar Sangyas Istanpa Ashchi Tang Chetak Yapchik Galwang Ispe Ringluks Zinches la Gongme Namthar Dagir Shkang Veshkabjuk Tang Soldeps Mondun Shuktak Juazateno. Ladaks Dryangs L E K A Laluk Juno Chukspe Choksne, Chenur Gonsalami Namden Shkabguntale Lama Gyalo Jenurbus Kunduni Skui Gostuni Sivenanga Dilan Chukspe Two Steps Chuksumpa Spelazate Jamshse Lo Shungsi Juat Zachestang Yampo Lalok Yuljongspo, Tugzas Chan Arzas Sirix Malkol Kani, Yuljongs Jig Gyurchuk Jesse Las Gulshula Zatenok, E Las Gulbosh Kabje, Dukpa Tuxerimboche, Chok Shkabje, Nurbut Sangrimboche, Chok Sospe, Lalok Yuljonsi, Lobtugun, Pamagun, Girgan Guntang, Yuljonsi, Goshkongun, Ujuk Sinanga, Taldik Echoa Zatenok, Itus, Erinboche, Chok Namnesis. Shchisuk sinanga tukzas chan arza sirigs kolkan guni tangskar gyasin yotkan ishkalas tunshses kolla tostuga zadinjik zhonshkes gunla tukzas chan arza sirigs arsawane mikolches tang itoksi arzas kolches ne. Kamsdika noshkal chenmo tang chostang jikste nisko ne ngalte inkan isko la kada lamston saltenok idus kagle inkan sangme dugzas chan irzas si riks arsawa ne mikol chesi nato le na zaden jik drug sej gyabgar la la sishul chesi nato tang lalogi yuljongs dugzas chan irzas si riks mikol kan yuljongs jigit sul lashkir la kyon chesi kachat zatenok. Shtojung is gamyul yargyasi pia Musgor Chewa, Bumchik Tangstung issues Sange Chajigun, Captors Zatenok, Sojung, Gamul Yargas, Lon Kunsi, Lonpo Shivraj, Singh Johani Shadazat Kananjin, Mahatma Gandhi, Rashtriya Gramin Rozgar Guarantee Act, MG Nareki, Nangloga, Smun Lasgor Chewa, Stong Suma, Nangwasal Sartenok Moto, E. Timspo, Talujulai Litses, Chigne Parla Yul Gampenanga, Lastirinanga, Kunsasinok. All Ladakh Central Government Employees Association ithus de jik chokspe tungshi sonam murubi ushkung in angar sojungi phoksi commission gyat pe thipa Justice Ranjan Prakash Desai tang thuga jate Ladakh si nanga sojungi laskuns kunin nanga chaklas jadin yot khan lachet pa gunla region specific allowances yangna yuljong sikaldan choste thop os kun asal gosmolte ispaspe jate nok thusdes Ladakh si nanga chaklas jadin yot khan central government lachet pa gunla special duty allowance ka theba tough location allowance salches High altitude allowance lanangwa salches North East Kadari All India Service AIS Sponbuguntang Tsoksla Basic Pay Ka Gyatong Ni Nishu Tsadika Special Allowance lanangwa salches tang Ladakh Sinanga Mitse Pustang Sika Dosong Chinbu Yotkan Bustang Ena Burte HRA Tangjan Gosdum Guni Pia Ladakh Si Yuljungs Kampo Y Class City Korinanga Burgos Molte Jua Pula Zateno Shilu Narendra Modi's Dirangyagari Tus Yunding Shos Tupa, Japstok Opulazat Kan Mima Sildamskan Shilon Gurtenok Skujaps Modi's Mildeses Nishur Saruk Chilo Nistong Chubjinanga Shilon Isula Una Namsazatin Pin Kongis, Pandit Jawaharlal Nehru Record Chakstenok Pandit Nehru Gomajigrang, Mildeses Chuksum Chilo Chikstong Gupyang Abchungangisinanga Mima Sildem Shok Saltildamskan Shilon Isula Una Namsazatin Pin Yang, Mildeses Nishur Sabdun Chilo Chikstong Gupya Tukchu Rabjitsu. Shilone Koseka Juxte Yulla, Japstok Opulazate in Pin Pandit Neri, Shilone Koseka Juxte Jamastong Ji, Sungya Gupchukov Gat Charlazate in Pinyang, Chilungistong Chubji mailed it says Nishur Sarugne, during Junit says Chungistong Nishur Saruk Supa, Shilon Narendra Modis, a Chadmedla, Shiloni Charlaz at Zajespo, Ta Jamastong Ji, Sungya Gupchukor Gika, Leptenok, Akashwani Lene, Tana Sultan.
2: Ngaji Akashwani Lini Juinjik Tangin Nime Chutsut Sumtans Karmachik Chaduk in Natangyampo Ngaji Diring a Digrim Tangpo Botun Digring is Pifia Pitu Chutsut Shneka Yangjalin Tete Tupangaja Gonspasalazat

0: Samtup Gyospa Senches La Delot Kakurpa Gun Laka Aspela Zatenok, Itus Layers on Sponis VVP Kak Atampenanga, Yergesi Chargi Mampojigas Nama Topste Yot Kantang, Chargi Mampojika, Lachet Dudin Kan Gun is Korgun Sospa Ashada Zatenok, Sospenanga, Kargil, Nubratang Zanskarir Zon Spontang, Sponbogun Virtual Gute Tusa Zatenok. Shamir Zonspon Kunzezang Mos, during Kalazenanga, PWD, Yuntan Laskunstang, Luke Gisbel Laskunstete, Laskunsose, Lasirgunizik Stoksalena Zatenok, Itus or Zonsponis Laskunsosenanga, Laschet Pagun, Tusika, Laskun Laskuches, Local Tupa Zachesla, Laskun Samenanga, Biometric Attendance Takchestang, Field Staff Gunifia, Chir Nangshin Register Zate, Laschet Paguni, Chaglas and Zatkan Gun, Register in Angat, Sis Nangjin Tobor Chidla, Delot Kakur Pagunla, Kaspela Zatenok, Tenatsokla, Zonspon Kunzangmos, Kalatse, Farke Gayotkan, ICDS, Las Kunsi Ziskor Zate, Laschet Pagun, Lasneka, Yodmiodi Skor Tang, Tugukunla, Zaptung Rixkun, It Sinspo Tobin, Yodmiodi Skor La, Argusha Zatenok, Itus or Zonspon Tangyampo, Kalatse, SDM, Mohammed Sharibang, Juxapinjarok. Shilon Narendra Modi during Gagarit Samesang to Sat Mangpefia, Yuli Utit Zatkan Shilon Gurtenok, Skujabs Modis, Niston Chubji, Mel Zes Nichur Tarugi Jaka, Shiloni Kosa Tang Samwe Una, Lena Zaten Penyang, during Tang Shilonis, Yuli, Mimanskula Japstor Juste, Jamaston Jitang, Sumga Urgupchu Korgusong Tanok, Butkani, Lochungis Ringsla, Shilon Narendra Modi, Utitinanga, Jung Chokne, Gagarinanga, Laskar Sosenanga, Yergestang, Jungshuli Circa Sosenanga, Zobskurs Nazar. Sosik ekamazat en pen. Stojungi sarpel tan tinskel laska galon po Ashwini Vaishnavis sarpel pagun tangyam po ijalta salinjik. Skujabs modis gyagar shilong iston jipchu ijabdun tsukpa. Yergyash chenir gyal kapchik ngur chukche se lhotak borteotanok mulazat.
1: आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है।
0: Zanskar Padumish Tatanka, Junit says Sumne Parla, Yuljongsi, Loptakang, Sose Parla, Salian Sedrazur Ursen Yotkanbo, Zagujitangyampo, Jugduazateno, E. Inter School Tunamenanga, Zanskar Yuljongsi, Lopta Sose, Loptokuni Parla, Volleyball, Handball, Table Tennis Tang, Barsal Tete, Salian Sekar Sosenanga, Ranran Saltan Kud Gunustana Zateno, Yang Angrim, Lonkan Gunna, Skundon Paguni Chakne, Soldiers Kuns Gosses Alteno, Dranzur is Tinjuki Zadguis Cups, Zanskar Erzonspon, Omkar Rajen. Kundon or Sotang, SP Rigzin Sangrup Steve Skundon Petsula to Zazateno. Leilun Tinkal Gutelada, Sir Natsulguns Hato Chusot or Gu, Nimichusot Nistans Karma Hapchunga, Pito Chusot Shatang, Pito Chusot or Duntans Karma Chongunica Sanchez La Prinjitano, Mimans Kunis Ladar Sir Natsulgun, Facebook, YouTube Tang Ex Kunikang, AIR News Leil Gutian San Tuchis Yotenok, Agash Fanileni, Taj Natsulton.

0: ये वे आयुष लोन खुंग शोक न जुनांग यांग इजे रा दक्सि योगा एंड मेडिटेशन वेलनेस सेंटर शोक ने मिमास कुनि थो नंग हगोस पेलचे से तोगा चिरिक जा देन यले
1: कसा चले ता इंटरनेशनल योगा डे बो खेते नंग ता 2015 यांग मास्टर सोंस देनो खलले कौ खेते नंग ता ता गुमा ता इ योगा बुंग ता ग्यागर ने बिन कांजि खलले ग्यागर इ जुशि इन जरा नो
0: नोकल जि
1: कसा रे नोकल जि इन जनो तेने त्यो ग्यागर शि पोचु पलुज मा गो जि तेन गंग पक हला सु छंगमा फांथोस गो जेते आता इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सिस्टे नो खलाले ता लो चुक्षिक चुक्नि छानो लोजुम योगा डे सिन छानो कावे जस्ते मिगुनि नंगा योगे नंगकु मंगा अवेयरनेस छिनंग नो योगे फांथोस संग लेनि नाय नो खलाले चाइ थुगु जिंदो चाइ छिमि जिंदो सु जिगिन ता तालु स्कोर बुंगे आजलिटिया जादत ना ngaje इका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फिया मिगुनि फिया चिजिक चुयन योद मोलत ना तने हेंडेड डेज काउंटडाउन बोतो दुले नाय नो खलाले देने गाजा दक्सा नेशनल आयुष मिशन इचोक्स ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नंग देने मुरारगी देसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जितियोत क्या है बिल्ड जितियोत क्या संगमे जुंगदेला देने ऑनलाइन योगा हलाले ऑनलाइन योगा कैंपेन जिंग टू लिन योते नोयाले तेवे नंगकु संगमा मंगपो थुसंग थुसे नियोते नो घमे तेवे फांतोक संगमे ने नियोते नो काउ खेते नंग रिंगमेट बाय नोलेले छुमला तंगस देनो काउ मिगुनला फांतोक शेसिफिया तेना चोक्स ला तेने गाजे ऑफलाइन योगा क्लास अंग रंग रंग सेंटर का शुल नियो तेनो ले सुजिक दत पा यो ना शिकोत ना दिस तेनो तेने मी मा पोशको देना इनो थु से ना इनो गयाले तेबे फांतोस बोले नि ना इनो ले ता तेने गा हे ए काउंट डाउन जेते गाजे ई नेशनल आयुष मिशन ए सेंटर निज योत ले काउ खेतना चिपो लमडोन स्कूल आइनो चिको छनि स्कूल आइनो तेबे का गाजे रंग रंग इंस्ट्रक्टर दुक्स ते सुजिक शिकोत दत ना चाय स्कूल ई थुगु जिगिंदो या गेरगन जिगिंदो या लाचेत पा जिगिंदो मन पतने तिना दल दो जुस्कन ठाकुरे हलाले माता मी सुजिक शिकोत दत ना गाजे योगा क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस टुले ना आइनो गयाले ते हो खेतना गाजे मकसद पो गाजे इंटेंशन बो मी गुनी ना कु आयोगे अवेयरनेस पो थोप चुक छे जंग योगे फांतोस पो सम न्यान तो मिमांग पो छु पालेप चुक छे सुंदर छु नंग इनले
0: कसर तशिले तंगा ता योगा जुआ छिंग न्यान पो दक्सिंग ता काउंट डाउन जुआ छिंग न्यान पो या जमनी छिल दने योगे जक छ छिंग न्यान पो तिमे जक खाचि गिर गे फ मालुस ता तने यु न ता मिछे खाक छ खाला ले जक तुंग मिछे गजु न ता खजी जा छ छि न ता अन ढुल छ छि इन ला जा छ छ छि इन तेजुक छ न ता जक ता ला छि गुरा जोख छ गा तने योगा न गुम गप छ पो जक तुंग न ता नै मन मिछे खाक छ गु छुक छ से पिया मेरा छि मोल इंसान कर लन गस लगा सा
1: ये सनकन लैंग्वेज ला इन नाउ जुचेस इन ये जगुंता इंटरनेशनल योगा डेजर पर छंग मा हीलिंग शिशो रनो खलाले तेना जा खाचि छंग मा योगा चो अनो ते जा पो छंग मा योंस योगा चो नो तेना चिचिक पो छुपा मादुगा इंटरनेशनल योगा डे छुपा मादुगा तेस तिंग नंग ता दिरिंग ngatang dulin nang yote no online classes ang dulin yote no offline classes ang dulin yote no te chupa ngatang yoga de chupa practice bochos de nang maduga ते कने कंटिन्यूअसली दंग दिनिया काजुक शिगा डुलात काजुक शेंगे जे टाइम ने फिंग्स दे योगा प्रैक्टिस चो योगा देफिया तेना टाइम बुक कंटिन्यूअसली फिंग्स दे रंग मि छिनंग ने हलाले सुसंग मा बिजियत क्या दिरिंगा रंग रंग सो से ला जत क्या रंग स्टूडेंट गुन रंग स्टडी नंग को बिजियत क्या ते ओ इन नंग रंग जुक्स पे पि हलाले रंग लूज नंग सेम्स पो ट्रांसपोलुश से फिया तने चि जस्ट तंगे जुवा फुलत किंगे जागुन तुजे जाते दसा कजुक शिगा प्रैक्टिस चुत नंग फिंग टाइम जे फिंग्स ते तेना टाइम बुक कंटीन्यूअसली बोरा जात तने गे जाता ऑनलाइन जोस्ते तेम से फंतो समिरक जिरका नाम मांग बोयंग दुखालेले नजा हागो मेरा या तने चि जोस ता एला रख जकन बोयंग दुख पाले ऑनलाइन जिक सों पासंग एला रख ते तुक शिक्षा ना गे जंगाय जे सेंट्रल लश को दा जात लमडो स्कूल लंगे खोरा जुक सोत ना लमडो स्कूल लश को दा जात छंगे दिस गे खोला जुक सोत ना छंगे दा शिक दा जात करो नि जा मा तो फितो का टाइम जिक टाइम थो बत नंगे जा टाइम फिंग्स दे चीफ एज ना ई योगा बो खेत ना ता लूज नंग सिम्स मिस के फम फंतो चन जिक नुगले तने जब मा ता लूज नंग सिम्स बो थंगसपुल लुसत ना तने रंग रंग लाइफ ना ती ची चला शिक जादत नंग हल्ले ते बो दिमो चुस ते चुंगन चिज नुक पहलाले
0: ओनली
1: तने गलते रंग लूज नंग सेंस बो थंगसपुल मलुस दिनिया तंग ता क्यूट क्यूट पे का चोन की उल चो जो आ चो जो बिजी लुवा नुक पाले ता थोरी जुक स्पेस सात मातंग ना हलाले ना लूज स्पेस सात मातंग ना सेम से सात मातंग ना तने ते लास्ट बो कंटीन्यूअस बोरगन चिज मानो खलाले ते फेंगा इज रात किंगे जागुन continuously yoga mane kam se kam ne jagan ta phit phingen index den ro jangai pya te ngen chuk de phingches le tus mane chi chus den ngen chuk de phingches ta ki ngeje
0: ni shi sabji na tus tut phit tina chi jang se
1: jo bis gante na ne ngata ada ganta ji phings de jangai pya tang chis le to khak chane nok pale tene jang lose nang sense bo khams de bo

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।
2: फिल्म लूटिक्रम बिना का सत्ता, मोहम्मद रफ़ी ने आप तो ऐसे ना थे फिल्म लो सनजद लूट सुमकन नीदा फसली अलवेंस डिकन उषा खन्ना।

0: ngashe akashwani lene jwin chik tang en phido chu chu tuk chaduk kasata akashwani dali ni hindi ta ang rezina nasul sanajat
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA-governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
4: Prime Minister considers the youth of India as the country's greatest asset. Therefore, he has introduced several programs with strong emphasis on skill development, Startup India, innovation, digital economy, sports, entrepreneurship and fitness. As a result, India has emerged as a major sporting nation, one of the world's three largest startup ecosystems and has demonstrated remarkable scientific capabilities through missions such as Chandrayaan.
3: Mr. Vaishnav said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad Gandhinagar will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The government has approved extension in validity of the credit guarantee scheme for microfinance institutions 2.0 up to the 31st of August this year or till guarantees for an amount of 20,000 crore rupees are issued. The Ministry of Finance said that as on date, loans totaling to 770 crore rupees have been sanctioned under the scheme. The scheme aims to provide credit guarantee support through National Credit Guarantee Trustee Company Limited to strengthen lending to microfinance institutions and facilitate increased credit flow of up to 20,000 crore rupees to non-banking financial company microfinance institutions. The chief of the Balochistan Liberation Front, Dr. Allah Nazar Baloch, has criticized Pakistan's policies in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, saying that growing public resistance in the region reflects demands for fundamental rights, self-determination and political freedom. According to media reports, Dr. Baloch alleged that Pakistan has increasingly relied on repression to suppress dissent but has failed to curb demands for political and economic rights. Meanwhile, reports indicate that more than 30 people have been killed and around 200 injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And with that, we end this news bulletin.
0: ngache akashwani lene shwenjik tain pitoy chuzo tuktans karmash chuchaduk kasata gamilpes kadlon digrim sanajat digrim pulkangun tilestan zentan dashki tolkar yam digrim ekotik zatkan sonamanchuk.

जय हिंद। फौजबाज सुनेंगे अपने इस वक्त के कार्यक्रम में फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत कुछ ना कहो फिल्म से सुनते हैं, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान रॉय।

अभी आप सुन रहे थे डुप्लीकेट फिल्म से गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। अगला गीत लीजिए, सुनिए खामोशी फिल्म से, आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए इश्क फिल्म से गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार है राहत इंदौरी और संगीतकार है अनु मलिक।

0: ngache akashpani lene shwin jik tain kasata to so chape stingne ladakh sena na sultan delchat sanajat
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।
2: सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख नंगा निस्तुंग निशुर सारुक निशुर सब्दुन एकेडमिक सेशन एफिया एडमिशन गुजुक सोंगतनो लोपथुक गुने सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंगा जान तंग मिदावे थपलिंग नंगशिन लोपजुंग गुन लेन थुपचिस यतनो इनंगा एमटेक एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी एमए पब्लिक पॉलिसी बुद्धिस्ट स्टडीज एमएससी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन टिबेटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड मेडिटेशन टेक्निक लोपजुंग सालचिसनो लोपथुक गुनला Lopox UGC Nangshin Topchisinok, Gate Tang CUET, Yangjan Competitive Ryukskun Lengos Metmanok, UGC Teams Nangshin, Program Rede Nanga Loptuk Jipchu Lenchisinok, MTech Tang MSC Program Gun, IIT Madras Tang, IIT Kanpur Gute Topchisinok, Yang MA Program Gun, Sindhu Central University Kalateka Topchisinok, Tene Loptukune, Sham Jongse Kalate Zertang Ekayotkan, Sindhu Central University Nanga Admission Lenajat.

0: में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित कीर्तिमान स्थापित किया है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है।
1: लद्दाख उजुम नजदीर शिशक्यों जोन बा विनय कुमार सक्सेना श्रीलोन नरेंद्र मोदी ग्यारी उठित जदिन युलिमिमांस कुनला छमे संग तुसत मंगपे फिया जबसोक्स जुखानी श्रीलोन गुरशिस पार्टा शिदलक्स जुवाजा तेनोक बीजेपी लद्दाख ठी पार्टा शी गलसन खाचुई लापतोने नंगा जदे ठिपा जोन बा ग्याल पी वंग्याली उचुक से नंगा अर्जोंगलदानी ठिपा रिगजिन छुबी तंग ले योगमा मंडली ठीपा ठिनलिस छोजडुक गुन शे तंग स्पितु गोनपा गुन जलास क्योते श्रीलोन नरेंद्र मोदी स्कूचे रिंगचिस तंग स्कूखम जंगपो लुशिस सीज मुल्लम जो जाते नुक इतुस गोस क्यों गुनिस श्रीलोन नरेंद्र मोदी उठी दिनांगा सोजुंग इच्छोक्स ने लद्दाख ला यर्गियस कोंपेले थोका रोजदेल थर्किल जादिन योत्खान गुंटा नजा जिंजिक योंचे शनि तुस कुने नंगा खोंगे उठित जादिन युल्ला यर्गियस कोंपेल छाचे सी रेजमोन जंगपो उंचो जाते नुक ई नासुलगुन निजरंग लंग्यासला आकाशवाणी लेने संचला फुलिंजिक ताइन आकाशवाणी छोक्स ने चिचोक से मीमा स्कूलना जबस्तोक सुमित इजुआ जत खान गुन लिवा पूजे से खाक चिकित सुल्ला चिचोक ला जबस्तोक इजुआ जत खान गुन तंग रेल ते मिक्सा ली डिग्री में खाक रिक संचला फुलिंजिक तानुक दिरिंग खाक बनांगा निश्तोंग ईश्वर सरू की पद्मा एवार्ड नाम सजात खान डॉक्टर आर्मीदा फर्नांडेसी स्कोरला संचला फुलेन
2: ४३ में कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर धारवाड़ में एक चंचल और दयालु कन्या का जन्म एक मशहूर कवि और एक गृहिणी के घर हुआ। मेडिकल स्कूल में डॉक्टर अर्मिरा फर्नांडिस अपनी क्लास में अव्वल आई और आगे की पढ़ाई के लिए धारवाड़ से मुंबई आई। वहां वह बच्चों की डॉक्टर बनी। उन्होंने मुंबई के एक नगर निगम अस्पताल में नौकरी कर ली। वहाँ शिशु मृत्यु दर ने उन्हें झकझोर दिया और गहराई से प्रभावित किया।
3: As children, my mother always told us, give to the poor and God will give you back 100 times.
2: छोटी empirical studies के डेटा की मदद से उन्होंने प्रभावी कदम उठाए। शिशु को नहलाना, ग्लूकोज का पानी, फॉर्मूला और जानवरों का दूध और इंक्यूबेटर का इस्तेमाल बंद किया जिससे बैक्टीरिया फैलते थे। इनकी जगह तेल का इस्तेमाल किया और शिशु को गर्म रखने के लिए लाइटें लगाई गयी। इन्फेक्शन रेट तेजी से घटी, जीवन दर बढ़ी और इनके साथी भी मान गए। ये आसान कदम अब ग्लोबल प्रोटोकॉल है। हालांकि इनकी सबसे बड़ी पहल एशिया का पहला मानव दूध बैंक शुरू करना था। इसका विरोध भी हुआ। अगले 5 दशकों में अर्मिडा ने 2000 से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी और 3 राज्यों में स्तनपान का अभियान चलाया। अस्पताल के काम के साथ साथ अर्मिडा ने स्नेहा नाम के एनजीओ की स्थापना की ताकि धारावी में जरूरतमंदों तक इलाज पहुंच सके। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
1: दिरिंग जाल हप्पा यंगना स्कुंदुन इजिनुरबू चोगे स्कुई लकारी जगा सिरचेस हंगरिस खांगचानी गिदुन पगुनी जिदेजी खेन रिम्पोचे रजेचुन गावांग संग्यास अश्पाल जंपो छोगे उजुक सिनांगा रिजों शास्टुल रिम्पोचे छोक यांग शीत छोक्टुल रिम्पोचे छोक जालते मंडल तेंसुम फुला जातेनोक यांग शीत रिम्पोचे छोका गलकेन परशत मेटपा संग्यासी स्तानबातांग यापचिक रिग्यालवा निस्पे रिंगलुक्स जिंस्क्यों जाचे सीस मुलाम जो जातेनोक लद्दाख नामपे सौदी पोमियान लगे चौक्स ने दिन यांगना पोलजा जीपे छे निशूर ने जगह खानपुर ठिनले दर्जे लापस्तन नांगशिन खरदोंगला गांगले से गोम्पा लेर सेमो चोखांग छक्सल गांग तांग धर्मा सेंटर गुनिका जीवे संशोध पुलाजा तेनोक यांग युलजोंग सनांगा जीते थुंडल योंगचे सिस्मलम जोजा तेनोक जांसकार पादु मीर सेतांका जुनी छे असुम ने फरला युलजोंग सी लोपटा खान सोसे परला सालियांग से डनदुर से नियोत खान वो जादगो जिक तंग्याम पो जुग जो जाते नो ई इंटर स्कूल टूर्नामेंट नंगा जांसकार युलजोंग

0: करना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गशे आकाशवाणी लेने चुनचिक ताइन फितो छुचो दुन्दांस कर्मा जिपचु छादुक कासाता तोसो चपेस तिंग ने आकाशवाणी श्रीनगर ने उर्दिना न सुल्तान तपसरा सनाजात।

0: प्रदेश बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरान ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मंदिरों में वजीर अजम नरेंद्र मोदी की उम्र दराजी और अच्छी सेहत की दुआ की। उन्होंने वजीर अजम की जानिब से लगातार 4,399 दिनों तक इस वादे पर लोगों की खिदमत करने का संग मील अबूर करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ, प्रदेश बीजेपी सदर और मेम्बर पार्लियामेंट सत शर्मा और असेंबली में हिजब इख्तलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की कयादत में मुल्क ने कई शोबजात में तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क का तवील तरीन मुंतखब वजीर अजम बनने पर वजीर अजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे तारीखी पेशरफ्त से जाहिर होता है कि वजीर अजम अवामी खिदमत को यकीनी बनाने और मुल्क की तरक्की के लिए कितने वादबंद है ये जाहिर होता है। कई आलमी लीडरों ने भी वजीर अजम नरेंद्र मोदी को इस जिम्न में मुबारकबाद दी है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायका, पापवा न्यू गिनी के वजीर अजम जेम्स मार्पी के अलावा ट्रिनिडेड और टोबैगो के वजीर आजमों ने भी नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब हुए 223 मारूफ खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इन खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और बेमिसाल सलाहियतों से जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। मनोज सिन्हा ने नौकरियां पाने वाले इन उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतह की एक मीटिंग के दौरान आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका महकमों और सलामती एजेंसियों को इस सिलसिले में तमाम इंतजाम पेशगी मुकम्मल करने की हिदायत दी। इनमें खासतौर पर बुनियादी ढांचा, तिब्बी निगहदाश्त, सफाई सुथराई, मवासलात और राबताकारी जैसे इकदाम शामिल हैं। हुकूमत ने वित्रगाम कस्बे के लिए केपेक्स बजट 2026-27 के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत वाली एक वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है। ये जानकारी वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत पीने के पानी का बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होने के साथ साथ लोगों को पीने के पानी की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। वजीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी हुकूमत के उस अजम का आकाश है जिसके तहत हम जम्मू कश्मीर के सभी खत्तों और सभी लोगों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और लाजमी खिदमात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। नायब वजीर अला सुरेंद्र चौधरी ने बानीपोरा जिले में तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लेने के दौरान अफसरान पर जोर दिया है कि वो तरक्याती प्रोजेक्टों के मयार और उनकी बरवकत तकमील यकीनी बनाने के लिए तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने गुंडी सदरकूट में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। नायब वजीर अला ने कालूसा में एक अवामी वफद से भी मुलाकात की जिस दौरान लोगों ने उन्हें दरपेश कई मसाइल उभारे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उभारे गए मामला मुतल्लिका हुकाम की नोट्स में लाए जाएंगे। वजीरे सेहत सकीना ऐतू ने आज कुलगाम जिले के अहमदाबाद इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया जिस दौरान उन्होंने लोगों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। ज़िराअत, दी तरक्की और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने अपने हलके इंतखाब में फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा मजीद अहल अफराद तक बढ़ाने की हिदायत देते हुए मुतलकीन को हिदायत दी कि वह सभी अहल अफराद की निशानदेही करके उन्हें स्कीम के फवायद पहुंचाने की सही करें। उन्होंने सभी जिस्मानी तौर खास अफराद को जरूरी साजो सामान फराहम करने के अमल में सूरत लाने की हिदायत देते हुए कहा कि सरकार समाज के सभी तबकों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है और सिलसिले में तमाम तरह इकदाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज आसर शरीफ दरगाह हजरतबल का दौरा करके वहां तजदीदी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जियारतगाह पर बुनियादी ढांचे को दुआम बख्शने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, चाहे वो खिड़की है चाहे वो बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता था ये संगमरमर का है, लेकिन ये संगमरमर कहीं दिखा नहीं हमें। हमें नए सिरे से, क्योंकि ये हमारे अकीदत की बात है और इस अकीदत को बहुत ज्यादा मजबूत करना ये वक्फ का काम है, हमारा काम है और हमारे दिल की ये बात है, ये हमारा रूह है, इसको जितना भी हम खूबसूरत करें उतना कम है।
0: दरी असना दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ ने भी आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में जाजबियत और तरक्याती काम मुकम्मल करने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी की तारीफ की है।

0: वजीर मौसूफ ने आज आसर शरीफ दरगाह हजरतबल का दौरा करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान वक्फ बोर्ड ने जियारतगाह पर कई तजदीदी काम मुकम्मल किए हैं। इस दौरान संजय सेठ ने आज वादी से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ और कसीर लिसानी अदीब डॉक्टर सतीश विमल के घर जाकर उनकी अदबी खिदमात के लिए मौसूफ की इज्जत अफजाई की। डॉक्टर सतीश विमल हिंदी, कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी में 30 किताबों के मुसन्निफ हैं और मुल्क के अदबी उफक पर छाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातें जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले रोज हो रहे एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक किया गया वादा पूरा करे। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जंग का सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, नीज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मयार में इजाफा करने के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। कल मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चंद महीनों में जम्मू और श्रीनगर के दरमियान का सफर महज 3 घंटों तक महदूद होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई अहम प्रोजेक्टों का भी जिक्र किया।
1: जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन, बनियाल, अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो 4 लेन पोलशुराम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पद यात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मुनशियात के खिलाफ LG का पैगाम,
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक नामवर मुआलिज डॉक्टर नजमुस साकिब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
3: ड्रग एक ऐसी लानत और नासूर है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और खानदानों को तबाह कर सकती है और बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में मौत का बाइस भी बन सकती है। वालदेनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत में रखे और उनकी चलने फिरने में कड़ी नजर रखे। हम सभी लोगों पर यह फर्ज आयद होती है कि हमें नशे की इस लड़ाई में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर तआवुन करनी चाहिए और मुस्तकबिल में हम अपने माशरे को इस वबाई बीमारी से साफ पाक रखें।
0: इधर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए कदलबल पांपुर के मंजूर अहमद मीर उर्फ मन टाइगर नामी ड्रग स्मगलर के 1,20,00,000 रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। पुलिस ने कटीपोरा टंगमर्ग के रहने वाले एक SPO खालिद नजीर खान को NDPS के एक मामले में मुलावस होने की पादश में बरतरफ किया है। पुलिस ने सोपोर में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई को जारी रखते हुए अशफाक अहमद इतू नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली मरकजी सरकार ने 12 साल मुकम्मल किए हैं और इन 12 बरसों के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतद्दिद स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मरकजी सरकार के इख्तराई प्रोग्रामों से एक तरफ मुल्क तरक्की की नई मंजिलों को छूने में कामयाब हुआ है तो दूसरी तरफ आम लोगों के मयार हयात में भी बेहतरी आ गई है। जम्मू कश्मीर भी इस तरीके से मुस्तफीद हो रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां द्रावी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
4: 12 साल बेमिसाल है और लॉन्गेस्ट टेन्यूर जो है किसी भी प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, वो प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और ये तारीख

0: मिटा नहीं सकता, ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहाँ पथराव, हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज अब बढ़ गए हैं, IITs और बाकी चीजें, अब हड़ताल पीछे रह गया है, अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई, अब तरक्की और कंप्यूटर AI का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है, टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है।
1: मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर पंडित बरादरी के एक ग्रुप ने आज प्रयागराज हेरिटेज टूर के तहत अनंतनाग में मार्टिन सूरी मंदिर का दौरा किया। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि इनमें से बेशतर लोग 36 बरस के बाद कश्मीर लौटे हैं। यहां पहुंचने पर मुसलमान बरादरी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बाद में एक कश्मीरी पंडित सुरेंद्र कोल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया।
2: हमने एक इनिशिएटिव लिया प्रागाश के नाम, एक ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव, जो कि 6 तारीख से शुरू हुआ और 6 से 12 तारीख को हेरिटेज कंपोनेंट है उसका, और 13 और 14 में SKICC में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरा समाज, ये समाज की आवाज। इसमें से बहुत सारे लोग 36 साल के बाद कश्मीर में अपनी माटी पे कदम रखना, आज 36 साल के बाद जो घंटियां हमने 25 साल में सुनते आ रहे थे, मंदिरों में जाते थे, वो घंटियां आज 36 साल के बाद सुनने में आई।
1: दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के जम्मू कश्मीर चैप्टर ने आलमी अमन माहौलियात के ताल्लुक से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का उनवान ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन था, जिसमें सभी मुकर्रीन ने बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजों और नई इंसानी पर इसके असरात पर रोशनी डाली। सेमिनार में माहौलियात के बचाव की खातिर फौरी कार्रवाई की जरूरत उजागर की गई। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशु मेहमान खसूसी। सागर कल्चरल फोरम सुकर पट्टन की तरफ से 13 जून को शीरी बारामूला में इश्क कशिर कशिस लोला बरव मौजू के तहत एक रोजा अदबी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर रेंज के DIG जावेद इकबाल मत्तू ने आज अनंतनाग में एक मीटिंग के दौरान आने वाली यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतलिका सलामती एजेंसियों के माबेन बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि यात्रा के ऐसे इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और दीगर सलामती एजेंसियां यात्रियों को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने आज शोहामा गांधरबल में 22वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद खान ने की। मीटिंग में जरिए इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में मरकज के रोल को उजागर करते हुए वाइस चांसलर मौसूफ ने कहा कि तरक्की पसंद किसानों और ज़राअत से मुंसलिक कारखानेदारों को इस ताल्लुक से एतमाद में लिया जाना चाहिए। और अब रेल से मुतल्लिक ये खबर। रेलवे डिवीजन जम्मू ने रवा मौसम के दौरान मुसाफिर और श्रद्धालुओं के रश के पेश नजर कन्याकुमारी और त्रिमुलवेली से कटरा तक चलने वाली रेलगाड़ियों में इजाफी कोच जोड़ने का फैसला किया है। कन्याकुमारी से वैष्णो देवी कटरा तक आने वाली कन्याकुमारी हेम सागर एक्सप्रेस में एक कोच, जबकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा त्रिमुलवेली एक्सप्रेस में भी एक कोच का इजाफा किया गया है। आखिर पर मौसम से मुतलिक ये इतला। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
3: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समीना पेश खिदमत है तबसरा।
4: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। किसी भी खिते की तामीर और तरक्की, बेहतर मईशत और इक्तिसादियात के लिए रसल और रसाइल का बेहतर निज़ाम बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सड़कों का एक बेहतर जाल कलीदी अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में सड़क राबते को जदीद तकाजों के साथ हम आहंग करने के लिए मरकजी वजारत ने मौजूदा सरकार के मारिज वजूद में आने के साथ ही सरफेस ट्रांसपोर्ट को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा। नतीजा ये कि आज हमारी UT में सड़कों का एक बेहतरीन जाल तामीर हो चुका है। खासकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरख की सूरत में आज हमारे पास एक बैन अल अक्वामी मेयार की सड़क मौजूद

0: 당시 스트린빈 답했나 데스트린 같다 답 미쪽 발랑 당시 록소 록소 스만 같 상당시 콜바르스 다디 Lutta Chosman Luttangmanang ati sala tsatse shtir goshan zebo yaseng yot pi shtiu kule kule tsaren gwetpa. Gwana de malse ka ngadang si ngati lut, ngati nang yung chospi lut, ngati balut ze na ralut ze na ya de changma ngadang si kolchas po leksi na tsasa gwet. Yuana chokso chokla ngadang si pagzi ya strin bin sat pala ngadang si seka ngadang si sman kat ngadang pagzi kolet na des man ka dikhana chigot zebana ngati sa na yot pi strin kata shit. Ga strin ka thuala byabu yot de strin ka shis pi strin ka zana de byabun sa ngadang la kherana shin gwen yot pen. Gwana byabuna de strin ka chik na chigi kha thwana mana phungma chok bukhma chok zare thudu yot pen. Strin ka desi de Mijin ka de utpi, strin ka byabu nisi, tu se jukpa, byabu nisi kong zana, ngati jing ka rsakhma gwenpa. Ta dosi ngadang isi, strin ka satpa la ngadang isi, pagzi sman kol senna. De sman ikana shispi, strin ka zana, byabu nsa shi. Byabu nsiya na ngadang la, ya ngati serna binfi strin ka, ya ngadang la shnot pi strin ka, ya tamala se mishe sonse de strin ka jak pat jak arba ur ba gwain wana ze bi ton tak pa gyoin ngati khet bachao abhiyan zarin chi srule net pe gila sirpo ya tharkel go chu pala ngadang sangma se sangati lak thut po ngadang si chamche go na byachas nyan tup ngadang si ngati jing ka dekha ngati lut ta chas ngati nang no ne bim fi lut ngati don ngadang si gashari kol bi phaluk bachas ya dekha na sang ngati jing ka dekha ya di shin sat pi ya ngadang sman ka kol na des man ka nyan tup ngadang si mikol bi phaluk base du gochot gochuk chas po ngadang sang mi khalek se na chogo bab chigo tam po ge has kure idang nang si trilan chuko chogo trilan po la idang se na bes
1: drink stadium na ba khan jamat ka kafon na ang se mol nang si trilan chiko chuko pala dikha shok se rekhon se ju doctor asghar ali physician specialist ju snm hospital lena ju wana changma pacha nga sisna doctor sab yan la yirin thos wak ka den wak fin se dikha shak chas po la ju ser moson zre ju den yomo yomo ju nga dang changma la tak pa ju do se nga ti gastric gang yan ju nasha mukt abhiyan zrin chi ju drugs ju de shnot pis man ka di skor la nga dang si myun la mi mang la shang skul bi la sirkat ya ben yot pan ju wana changma pa chas na nga trilan po ya le yot ri ju di drugs ze shas po ya chin ju do ya doni bare chun chi ang jip sal ba se kasal bi un lek sin lekh mu gi ju
2: gwana assalamu alaikum changma su se na ben na
1: ba se ju
2: گوانا جو قیم صاحب یہاں سے ما لیاں مو ٹاپک چھ گیاس گرینگ چوز بسا گوانا ری گیا ٹاپک پو دو سے گاتی یسٹ مین ما لداخ سین چھ گاتی آل اوور انڈیا
1: بس جو
2: چھاں بزا الینگ دو سے ڈسکس بنی ٹاپک ٹاپک چھ چاز من یہ ہر جگہ نال کی ڈرگس سی پرابلم بو ڈرگس ایڈکشن نی پرابلم بو مالی جی ان تھونی تو
1: بس جو
2: گوانا جو ڈرگس ابیوز پو گران چین زو زر بنا یا لا گاتی سپرن ہاکو چھ
1: نہ جو
2: گاس من چھ گایا گا چلخ چھ گدان سی گاتی گوی phan mi phyang adang se use ma ba ko ngati rgwe ga not pi phyang adang use bet cha ba na koi medicine de se ngana sman je doctor shi si advice bet gir goes sman pe rgwe ke phan mi ta ngana na do ashim met pa ngana se de ga chi shi ngati rgwe kha effect harmful effect chita ngai to or do ngana se ga shaba se use bet or go ngana mis use bet gyo ngana se zer ben ju drug abuse go na ju gi drug abuse pe anu ngana la substance ma ling ju do ngana se क्लासिफाई बना डिवाइड बना एक होता है नार्कोटिक ड्रग्स जिस पे है अल्कोहल ना टबाको गोने नार्कोटिक ड्रग्स पे नु गनाला थो जो समचा अलिंग कॉमन बनाला मींस यू फ्रूनिस यूज बा थो जो कोकेन गोने चोसला जो चरस गोलंगदा इंग्लिश नु मेडिकल टर्म नु कैनाबिस जरे जो दिया चोसला इंजेक्शन से नु गदा से फ्रूनिस इंजेक्शन आ यूज बत गोलाना हेरोइन जरे जो ध्यान चोसला गदा सी टबाको यंगदा सिगरेट डेली गना से यूज बत सुसी सिगरेट यूज बत जो सुसी alcohol use but go na sa addiction na sa include bit
1: sir gwana ju ta di dose yang se kasal bi ju narcotics pong adang si ya do chun chi chik dose ngati yul ka de anu ju do ngati dose gastric gang anu ju ngati legs na ngadang la du skablas mangme go ju gwana ding nu ju ga sul ya chun chi kho go jabana gashar ju phrun la ju naujawan ka la gauni lo ju ya chonges na ta se gyan la gyan la दोनों छुंची गशार लोप से गाना संगमा पचास ना फ्रून क्यों नहीं रोल्ला चिबा से थोड़ा जो दे बारे यहाँ छुंची चिक कसाल भी उन जो
2: इन जो संगमा पचास ना गाना ला ड्रग्स एब्यूज पुक आप फ्री चिक से ड्रग्स लेने ना मैंने आज भी गाना चिबा दाशु को मैंने जो गाना दाशु वार को देखा ना गाना ख्याल बचा सर मसूम गा फ्री चिक खुए गाना से ड्रग एब्यूज ड्रग्स लेन माना कौन ची ची तब्दीली गाना थोत
1: सर मसूम
2: गाना दानो नंबर एक पॉइंट जो संगमा पचास ना गाना फ्री बिहेवियर पे था गाना चेंज दूसरो लांज गाना चेंज ना को था देन मीन स्पेर तंग मत पा खो हाई तंग मत पा खो सी स्पोर्ट्स या खेल कूद ठीक ठाक बसे बात पा दो नानू खोला उल्टा हुए थे गुआ ध्यान चोसला सुकुल अनुसना कोई परफॉर्मेंस हो मैं ठीक ठाक चो मत पा दूसरे कोई परफॉर्मेंस पो कम रिंग आना थो या खुद चुप चते दुग स्पेर अलिंग तंग मत मी अली ना ग्रह पड़ दो तो शिशू लगाती आस पास अतंग या मीमो शिमलो चुमाती ना अनु थो ना गदा सी देखा गदा सी ख्याल बोचा सो मजा रुगो गुआ तज्ञा नु कारण गदा से ड्रग एब्यूज पो खान छिप गुजर बना इसमें दो तीन चीज पर माला जरूरी आना जरे जु सुसी यूज बेद गु एक प्लेजर ही फिया प्लेजर माला खुशी थके फिया निस्पे का सुसी बेद जु पेन ही फिया गुआ नो जु पेन ही फिया नाम बे यूज बेद जना का फ्री चिल्ला ना पेनु प्रेशर से अलिंच यो दिया ना आता फैमिली कन्फ्लिक्ट चियो आता ना ग्रीक फैमिली या फोनो सी चांस रे दिया प्रेशर तंग दया ना खुशी गया पेन पर रिलीफ बे फिया खुशी ड्रग्स है ना गुज जु निस्पे खा सूस यूज बेचो प्लेजर फिया प्लेजर देना गाना खुशी शॉर्टकट खुशी फिया खुश यूज बेच जैसे कि गाना लाचिक या अडोल्सन पीरियड है या 20-25 साल है उनको पार्टी बाग हुए मैंने पार्टी बाग वाना खुद दवा चिक पर खुद खुशी फिया गया ड्रग्स पर लेने दिया इंजेक्शन पर लेने दिया गया चरस पर खुश लेने मगर जब ना कुलिया कुलिया दी चरस पर खुआ पहला कोई प्लेजर फेलेंस जो पर खुए फिया एडिक्शन गुद एडिक्शन पर खुआ से हाँ कुछ ना जो स्ना स्ना गाते गया ड्रग्स पर लेन माना खुशी चाहत बच्चे बना गाते दिमाग पे अंदर केमिकल जमीत गोल लगाना डोपामिन जरे दे केमिकल पर खोला से स्ना खोला छुंची क्वांटिटी का बिंगत पर जुक पर कुलिया कुलिया खुआ दे क्वांटिटी बढ़ाए बेन बेन गोस गोल लगाना से एडिक्शन जब गुआ नरी गदा से ख्याल बोर्चा फ्रू गा गुआ गा पार्टी बांग दे पार्टी ने खुए आस पास म्यून चिनांग आस पास खुए फ्रेंड सर्कल पर चिनांग दोन गया ख्याल बच्चे उसमें मजा रुगत निस्पे खा सू लता एडिक्शन सो सो युत न सा दो लगाना से ट्रीट बाय ने ट्रीटमेंट बाय ने ज्ञान चोखला सूजा ना ना तो सिथो ना खोसी गोस्पा खोनास ना प्यार ना मुस परत अमर को हा को चुप निस्पे खा कोशिश बच्चा साइकेट्रिस्ट ना थुक से डॉक्टर ना थुक से चाज बने इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट है दो बच्चा
1: ताज्ञान जो अंगदांग लायंग स्पेरे चिक्त्रिचस पुदो लेख्स ना छसा समंग जो दिउने ना स्ट्रुंग से यक पिमिंग ना ngati छंगमा पचस ना फमाउनी रोल पो जो फमाउनी लास्को जो फमाउन ला चीची बारगो से जो फ्रून पगजी दे तरफ ला गो पचस ना जो गदा छुलो ओ म पचस ना गदा एसी अशकाला बागतों जर दिन में जो दे फिला फमाउनी रोल पो दियनु या चीद
2: कोशिश यो बचा जो गदा से सांपस ना एक तो प्यार से गदा हाको चुप निस्पे फ्रूला कोशिश ये करना है कि कोई मेंटल पीस या मेंटल अतः सी डाइवर्ट बचस्पो साइकोलॉजिकली डाइवर्ट बचस्पो खोले खेल कूद अनु अतः सी कोई मसूरियत पर गशारी बचा जो गुआने चोसला अतः सी ना अनु अतः से दिया बच्चा को कोशिश फ्रू ना हमेशा प्यार नमो स्पेर अतः से प्यार नमो को हाँ कुछ से प्रेशराइज मी बचा कैरियर रिलेटेड को इंची प्रेशराइज मी बचा निस्पे खा ngati elaqi khuri anusanga da se gitso community cho se ya youth type cho se ngana la sula de to se pata go na de community la ngana se zere de hana na chi ba yana step shi lena ngati elaqi level se ngana se bana ma li ham
1: jo merci jo gwan yang spirit chi do tri chas pole ek se na sa sa sa me ju

0: Khoda shung se nga ti dua po yo yun ju nga ti su chik sang di rola ma la mithon ju, nima ju. Pagzi su thale nore ya di rola thon set nari changma patas na ya nga danga si chibar goshan ju ga ga ya hospital la khe rukho su no dhuk por goshan ju di anu khwe treatment po chi chi yunga ju ya do ni ba rayan chun chi chik kasal bion ju.
1: In jugi drugs addiction na abuse anu nga danga si treatment bona zhe ni ju chang pa jasna nga danga si psychological ya nga danga si behavioral therapies re ju nga danga si koshish be ju ek specialist na nga danga thuk se gao la nga danga si medical nga di doctor ya nu ek specialist yunga gao la nga psychiatrist go nga danga si nga di hospital anu hamesha available गाना खो सी एक तो इनको समझाए बचे जो खुआ काउंसलिंग बचे जो गाना चौसला अगर देखा खो अगर मान ना सी हॉस्पिटल मेन में डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट से लद्दाख सन चोसी गानो ची सामा फ्री लेवल मान यो या खारजी हो कौन अस्ताचा दुख सा ची सामा अवेलेबल हो गुआ नरी चाज मैंने गी एडिक्शन एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम चीन गो से ट्रीट बाय हेंचे गुआ फिर गोर मचुक पा चाज मैंने गोर बना ये ड्रग्स सी साइड इफेक्ट पो एक तो आती है इंडिविजुअल आती फुल लगवा दिया ना चोस लगा आती आता ना आंगा लगवा दिया ना चोस लगा आती फैमिली नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ये हम वो आती डिस्ट्रिक्ट इन चले डिस्ट्रिक्ट लेंजे इंडिया छामा इन्वॉल्व हुआ गुआ नरी यान थुक चाम सी या ना सूज लगे चोस एडिक्शन जो सोस ना साइकेट्रिस्ट ना थुक से हॉस्पिटल नो को से ची खुआ एडवाइस बना यो बना इनशाला दे पेशेंट पो ठीक गुंजू
0: यंग स्पिरिचिक डॉक्टर असगर सब गायंग लियो टीचर्स पो लेक्स इन सा समझू गदंग संगमल तखपा जो दी ड्रग्स लिंचस पो संग यंग अति इन नत कर न चोख लंग अति सिंग खा सा रंग नु जु यंग अति यंग गुआ सा रंग नु जु यंग नत चिन गु नत चि चोख सिन जु दो मेन मसा मा जु अति म्युनिची सम जु ड्रग्स लेन अंग बनो छोगु मल भंग खेलबे चोख सि सोशल टैबू जर जु गोला दो लेने दिन मन जु वर तो मलेन मा जु दो मसा मा दु पारजी गदान ल फ्री चिक गिन नु लेन मो आशी गोनर जु दि खेलबा ल जिक से मादुक पा दु फिंग से गदान से या मेडिकल लिख सों से जु डॉक्टर लिख सों से दु लंग गदान से इलाज बचस पो चाचे छछन जु दे बारे चिक कसल गोन
1: जु गदान से सोशल स्टिक में हिसाब न से मिया ngasi mila tsamshe ngas gus snowy koshish ba ngas dun la phimi koshish ba me gona dose na da da dre tus pa nu ngala government chi sama facilities ngala available bas ju cha zamana gi drugs po agar lene ngas tan maltan na ngatir gwe naltare bahut effect ba ju liver kharabi ba ju jan tos la ngati mental depression ya anxiety tos tos problem ngala go chu jan tos la heart even ki heart problems ngala go gwa fri ngasi de fizer ju ngadala dangadari dunmi toshi met dose ngadala har cheez available yot ngadala secretary yot ngadala de addiction center yot do fri ngadala khel ma khel ba suchi gladi toshi thona sna yo sang ati na is dukse na pe ngadala si yana alta cha ko counseling ba se ko lyam was ha ko chuk se ko yana man na ngadala secretary so se ya ko kana rai lene ko se chi advice bana do bachas pangi sab ma zori sorry sir
0: sir sir musun doctor sab yang si narcotic ibare no ju lek se najib sal ba se kasal bi ju यहाँ स्ना संग यहाँ से कसल भी जो नार्कोटिक मेन में जो अल्कोहलिक ना या दोसे अति तमाक जो बेडी सिगरेट सोदाक जो दोन संग अतिर गोला लेग से नश्नोत पिंजे जो गुआन अति जो दोसे की छांग रिखपो जो या सिगरेट जो या दोसे सोधाक जो दी संग मा संग फ्रून लगा या खों ला एच गथन मन दून लोब से जो त्यू निकन संग स्त्रून से दुख चास्पो इर संब्यांगनो या चाचे छासान जो दे बारे चुन चिका साल में
1: सही जो ज्ञान तो सला जो एडोल्सेंट पीरियड है ची गाय एडिक्शन चिंगान ला थो ना तो एडोल्सेंट ना ला स्टार्ट गुद आदत पुदे खनगा स्टार्ट गुद मैंने जो ना तो सला गदा सी ए दे नारकोटिक्स मेन मा गदा से टबाकू ने alcohol sang ada si cham si yan nang ada si kam use baje cha za bana khong e effect po side effect po ngada la long gap na kulya kulya ngada la thong ju ngati rgo kha cha za bana cigarette idan la shi ju cigarette ek bahut common cause gin ju ngati rgo na nat khom ni na tosla ko nat ngada za na ju COPD ya dhama zar khan na ju dena tosla ngata cancer ngada la lung cancer ko ju ya alag ya ngata to cancer alag alag cancer no gi cigarette ngada la risk factor po yo ju dena चोसला अल्कोहल बांग ध्यान चोक्षी इन जो अल्कोहल भी एक एडिक्शन होता है दो संगदान से कुल्या कुल्या कोई क्वांटिटी बढ़ाए गुन गुन जो गो ना मती लिवर पोला छाम पसाली स्नोद जो लिवर और स्नोद पाना लिवर कैंसर

0: Darsang ejara es kalzang dol ka tang sonam dol me sal kane japri lurik sanazat.
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
2: जी
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
6: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
5: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
6: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
6: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूचक्र से आजाद हुआ है।
5: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
6: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
5: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
5: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
7: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
5: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
8: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
9: मैंने ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है. तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा

0: भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं. आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू.
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है. रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं. देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं. वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं. प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा. सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी।

0: सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 IITs की जदीद कार्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार PLI स्कीम के आम शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमू तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है।

0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नशे आकाशवाणी लेने शुंजिक ताइन सानी चुचोत गुदाम पे छादुक कासाता चुचोश चुचुक बाद सेवन डोलकर तां सेवन टिनले से साल कने लुरिक सनाजात

0: Darsang isharai sevang dulkar tang sevang dilne se sal kane lurik sanazats. Ngashe Akashwani lene shuinjik tain.
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए वरना घर आ जाएंगे.
1: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
1: डिजिटल अरेस्ट
2: 1,00,000 दो बच जाओगे.
1: इतने पैसे
2: अच्छा ठीक है.

0: एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कसरत सेवन डोलकर तेवन टिले से सलकनी ई लुबंग सनाजात।